0: इन्टरनेट, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008213424 र 9855014175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला मध्याह्नको ठिक 12 बज्यो।
5: अनपाई प्रोडक्ट्स प्रालि

0: बिटार थियो
1: एनुअल सेरेमनीको दिन त जे परे पर्ला प्रपोज ठोकिदिउँ कि क्या हो
0: साँच्चै एनुअल सेरेमनी चाहिँ कहिले हो नि

0: नाव लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: छोड़ो, डरपोक ही की।

0: सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामानहरू 0% ब्याज दरमा उपलब्ध छ। यसका लागि 2 प्रति नागरिकताको फोटोकपी र 2 प्रति फोटो ल्याउनु होला। सुलभ मोबाइल एसोसरिज शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौंडा सिद्धार्थ बैंक भएको भवनमा। प्रोपाइटर राजेन्द्र पौडेल शान्ति पौडेल। सम्पर्क 0 65 4 14 0 50 मोबाइल 98 4 63 23 811।
1: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।